बिल्कुल जी, पहला नंबर है 03-12-50-25-907 और दूसरा नंबर है 03-27-38-43-909। अच्छा, ये नंबर से जो कि आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा सकते हैं, तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं मिल रहे, और जल्दी से हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताएं आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं। ओके, तो बिल्कुल आपके कॉमेंट्स हैं जिनकी जानब हम आएंगे, आपके साथ गुफ्तगू होगी, बातें होंगी, चिटचैट होंगी, मजे करेंगे। अच्छा, तो कॉमेंट्स वाले जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है जना, पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। ऐसे ये होता है कि भाई बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आ चुका है और कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अभी चल रहा है। ओके जी, सो प्रोग्राम में हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं बरकत रमादानी जमाली बलोच, हमें सुन रहे हैं जी बलोचिस्तान से, आपको वेलकम कहा जाता है। रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपका प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा अखलाक बलोच हमारे साथ, अखलाक भाई कहते हैं नाइस शो, आपका इंतजार कर रहे थे, जाय बुधा। और सलीम गोपांग हमारे साथ कहते हैं नूर हुसैन जमाली, गंदा खान बलोच से बेहतरीन प्रोडक्ट है, हम इस्तेमाल करते हैं, क्या बात है जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूजर आ चुके हैं महफिल में और आपको वेलकम कहा जाता है। और हाफिज मोहम्मद बाबर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और राजा रमीज हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, कहते आपका नाम क्या है, मेरा नाम सिद्रा मुस्कान है। और उसके अलावा फरवा गुल हमारे साथ हैं, कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपके अच्छे नसीब करे, आमीन जी सुमा आमीन। और नजीर कोसम में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, भाईजान को वेलकम कहा जाता है। और भाईजान लिखते हैं कि अल्लाह से प्यार करने वाले अल्लाह के काम से प्यार करते हैं, और खालिक की इज्जत करने वाले, खालिक का अदब करने वाले, खालिक के अमल का एहतराम करते हैं, और खालिक का अमल मखलूक को पैदा फरमाना है। अच्छा जी, ओके ओके, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और साथ साथ हम ये बहुत ही प्यारा सा गाना भी सुनेंगे, आप बोलेंगे कि भाई सिर्फ सदरा बातें करती जा रही हैं, तो गाने भी सुनेंगे और आपको बताएंगे, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताएं कौन सा प्रोडक्ट लगाया, कब लगाना स्टार्ट कर चुके हैं और रिजल्ट कैसे पा चुके हैं।

मोहम्मद राशिद अवान हमें सुन रहे थे। सलाम सिस्टर सिद्रा, काफी दिनों के बाद आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। जीशान अली बोजारा में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। फरवा खुल के थी सिस्टर, आप कैसी हैं? शो आपका नाइस है, गुड वॉइस, ओके थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ वफा मुमताज अली खोसो भाई, गोट रईस गुल हसन खोसो से, वफा मुमताज अली खोसो, कलंदर बख्श खोसो, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। शो तमाम जबरदस्त आए, थैंक यू तमाम भारत जो मोहब्बत हुआ है। अखलाक भाई कहते हैं कि आंसर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के हम अपने हुसन की केयर करते हैं। क्या बात है। वैसे मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, यानी कि खूबसूरत होना, खूबसूरत रहना हर किसी को पसंद आता है। कोई एक ऐसा इंसान ही होगा जिसको खूबसूरत दिखना अच्छा नहीं लगता होगा। हर किसी को खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है। खूबसूरती का ख्याल रखना ये बहुत ही एक अच्छी सी आदत होती है। तो आप मुझे बताएं कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रखते हैं, और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ही बात है। और उसके अलावा कासिम खान हमें सुन रहे हैं, सरदार कासिम खान मीरानी, ओके शाह जमाल से हमारे साथ है मेरे ख्याल में, आपको वेलकम कहते हैं भाई जान। और चाचा खालिद आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं चाचा, तबीयत कैसी है आपकी?

0: पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को बताइए, सबको बताइए। जनाब यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में आ चुकी है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आ चुकी है तो छा चुकी है। यहाँ पर इरम भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, वालेकुम अस्सलाम। और टाइम भी हुआ जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, आप जरा हमारा इंतजार कीजिएगा और थोड़ा सा, क्योंकि हम दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे जी 1:40 पर। तो आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, आप सुन रहे हैं Whitish and D Skin Beauty Show, sponsored by Whitish Beauty Products and D Skin Beauty Products. इस्तेमाल कीजिए और हसीन हो जाइए।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा, और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: खुशखबरी, सिंध जो मशहूर अखियुनि जो माहिर सर्जन डॉक्टर गुलाम हुसैन तुनियुम साबका इंचार्ज अखियुनि जी अस्पताल LRBT गंबट जदीद मशीन कंप्यूटर वसीले अखियुनि जो चेकअप लेजर फीको मशीन वसीले मोती पानी जो कामयाब ऑपरेशन कंदा उन अलावा कारो पानी अखियुनि जी मुख्तलिफ़ बीमारियुनि जा ऑपरेशन पिण कया वञनि था। डॉक्टर साहब रोजाना सुबुह 9 खां मंझंदि जो 1 वॻे ताईं शुजा अखियुनि जी फलाई अस्पताल दर्स बाईपास चौक मोरो में मरीज जो चेकअप ऑपरेशन करना आहिं। वधीक मालूमात जे लाइ 03013526807।
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: मोरो उनजे आसपास वारनि जे लाइ खुशखबरी, मोहम्मद
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
7: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
8: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
7: जीए FM नेटवर्क
8: सिंध की आवाज।

ऐसा वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं जो सेफ हो, आपकी खूबसूरती को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो बिल्कुल जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तरफ आ सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो बेशक लगाइए। वैसे भी आप लोगों को इस चीज के बारे में अंदाजा होना चाहिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट से थोड़ा आपने अवॉइड करना होता है। वैसे भी जब आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट भरा पड़ा है भाई ऐसे प्रोडक्ट से, ब्यूटी प्रोडक्ट से, जो कि आप लोगों की स्किन के लिए दावा तो करते हैं कि हाँ भाई हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको देंगे, आपकी खूबसूरती ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, लेकिन जब आप उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो आपकी जो खूबसूरती है वो तो कहीं गायब हो जाती है, लेकिन उल्टा आपके चेहरे पर जो है ना वो बहुत ज्यादा इस तरह के निशानात आ जाते हैं जिनका होना आपको थोड़ा सा इरिटेट कर रहा होता है। आपकी खूबसूरती जो है वो कहीं गायब सी हो जाती है और आपकी स्किन जो है वो खराब हो चुकी होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे और आपके पास कुछ अच्छे वाले प्रोडक्ट होने चाहिए, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की मेकिंग की बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन मिल रहा है और जनाब ये जनाब विटामिन ई बीट से भी तैयार की गई है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आर्बुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें जो कि आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर मिलने वाली है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है ना इतनी खूबसूरती मिलती है, आपके चेहरे के डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाते हैं, आपके चेहरे की खूबसूरती जो ना वो स्टार्ट हो जाती है, आपके चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, आपको खूबसूरती मिलना स्टार्ट होगी सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको रिजल्ट दे रही है सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से। क्या बात है भाईजान, बिल्कुल जी, अगर आप दो रातें डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मिल रही है खूबसूरती वो भी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे तो खूबसूरत होते रहेंगे, जैसे और सारे प्रोडक्ट आपके साथ यूज कर रहे होते हैं तो आपको खूबसूरती मिलती है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो आपकी खूबसूरती भी कहीं आपसे रूठ ही जाती है। ऐसा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मामले में हरगिज नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद होगा जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के नाम से होगा। अगर आप मार्केट जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि भाई हम कहां से जाकर परचेज करने वाले हैं, हमारे एरिया में मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि आप हमें अभी अभी सुनाई स्टार्ट कर चुके हैं, आपको

लाइक और शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके कमेंट्स हैं और क्या क्या कह रहे हैं आप, बिल्कुल जी आपके कमेंट्स की जाने बातें। उसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। आज कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, और खूबसूरती के मामले में हमेशा कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।

जी आइए, आप ही का इंतजार था। मैं सोच रही थी पता नहीं चंदा आएगी कि नहीं, क्यों नहीं आएगी। चंदा की जिंदगी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आ चुकी है, तो चंदा को आना पड़ेगा। आप बताएं कब इस्तेमाल कर रही हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम? वैसे मीरपुर खास में तो मिल रही होंगे अब, तो आप बताइए कब परचेज कर रही हैं। वैसे डी स्किन का फेस वॉश अगर पर्सनली बताऊं, भेड़ वाली सलाह का पाई ना, तो डी स्किन जो फेस वॉश यानी डिस जाओ। ओके जी, अलीजा भी हमारा शो सुन रही है, अलीजा को भी वेलकम कहते हैं। अच्छा फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम उलैल इस्लाम। अदर कहते अदा छाला खुशी सफा चाक सलेट कलम भाउ असा भी चुप करी अमां जो शो सफर में बुधूं था, कराची वनी रहा आयूं। अच्छा चुप करे ना बुधो बाबा, थोड़ो गलायो गालाइंदा रहो, छो तो हरकत में बरकत आहे। बख्त अली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, भाई को वेलकम कहते हैं। वफा मुमताज अली खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, भाई जान खुशामदीद। गोठ रईस गुलशन खोसो खां तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे। ॿुधायो तव्हांजे ॻोठ में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी कोन? मिले थी त भली ॻाल्हि आहे, नथी मिले त पोइ तव्हांखे जेके नंबर ॿुधायां थी हुन नंबर ते राबितो कयो ऐं पंहिंजे ग़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए वठो। ठीकु आहे, अचो त ही ख़ूबसूरत गानो ॿुधूं था जेको तव्हांजे नाले हूंदो।

बात है, कितना खूबसूरत गाना सुन रहे हैं, खूबसूरत तो आप भी होने वाले हैं क्योंकि आप इस्तेमाल करेंगे जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और सर डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ जनाब इसे जो है ना डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। अगर आप लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता कि मेडिकेटेड फार्मूला क्या होता है, तो जनाब एक ऐसा फार्मूला है, किसी क्रीम जिसे डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है, डॉक्टर्स का फार्मूला है। वैसे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भाई कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले जो ना थोड़ा सा घबराते हैं कि हम लगाएंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। वैसे ये चीज होनी चाहिए हर एक इंसान के अंदर। वैसे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपके चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा मसला हो जाता है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल लगा सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाने वाली है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयार की गई है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तो चर्चे चल रहे हैं मेरी जान, इस्तेमाल कीजिए और आपको भी पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाह जो प्रोडक्ट का।

को जरा लाइक और शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए खूबसूरत हो जाइए। अच्छा ये हमारे साथ एसएन अली बुगटी मौजूद है जी, लाड़काना गोठ रोहल खान बुगटी खा तवा से प्रोग्राम बुध पया, थैंक यू सो मच मोहब्बत वाइन तवा जो। और महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, कहते हैं वेलकम बैक मैम आरजे, थैंक यू सो मच सर, आपकी मोहब्बतें हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। अखलाक भाई कहते हैं सियारो अच्छी वयो बाबा, थोड़ो थोड़ो आयो आना थोड़ो थोड़ो पंध में आयो तरी तो चवान थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा छो तो खोड़ मानू जी या रूटीन हूँ जी सियारो इंदो आए या सियारे में खोड़ मानू जी ना पांच चेहरे की केयर करना है सफा घनी वो क्रीमू लगाइंदा है वो चवन तो भाई कोई भलो प्रोडक्ट असा वो जो असा सियारे में लगाए सो छो तो सियारो तकरीबन मुख्य लगन तो सियारो जो ना सीजन हों क्रीम्स यूज कर तो अगर तुम भी सियारे जो इंतजार करो था या तुम भी सियारो अची वो है तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी वो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो पाया तो डी स्किन जो फेस वॉश उन लाजमी वो डी स्किन जो जो फेस वॉश है ना इन के बारे में तुम बुधाई हलां तो डी स्किन जो जो फेस वॉश है सब का पैरी गाल डी स्किन फेस वॉश जो तैयार थियल है बाबा हाइलोरोनिक एसिड सीरम से जो फार्मूलो है ना वो एतरो जबरदस्त रखो वो है अगर तुम यूज कर पाया या तुम यूज करने की तैयारी में आयो तो जल्दी कर बाबा ढो सुठो मौको है इनके हथ मान विजो हाने वो पानी करीबी जनरल स्टोर से उतना मालूम वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश मिले तो को नालो वी कर तलब कजो छो तो कुछ वरी दुकानदार एडा हूं थोड़ा वो हूं मतलब थोड़ा चाहिए टोपीबाज अगर तुम था चो था तदा असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश दे तो वो वही चवंदा उन्होंने न हों ना प्रोडक्ट तो चवंदा भाउ तुम हि प्रोडक्ट खड़ी वो हि हले वो हि भलो अव हि हि कर छी वो कर छी उनके तुम चेजो अदा फुल स्टॉप लगाए असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश ही खपे गाल खत्म अगर तुम ना तो तुम पे दुकान से अवेलेबल कराए वो जी नंबर तक प्रोग्राम बुधाया थे वो नंबर तुम भा के दई चो सदा इन नंबर से राबो कर भा साहब के बुधा तो तुम ही नंबर से राबो करो तुम पे गोठ में तुम पे दुकान

पाकिस्तान कश्मीर बाबत भारतीय बयान के रद्द करे छो आलमी बिरादरी का नोटिस जो मुतालबो परे ऑफिस मूजिब एक तरफ का तकरारी कदम वलारिल कश्मीर की हैसियत तब्दील नथा करे सगन ही मामलो गरियल कौमन की सलामती काउंसिल के एजेंडा जो हिस्सो है भारत कश्मीरी अवाम के हक डेण जा वायदा पूरा करे। सितंबर ए मई वे जंगन में पाक फिजाए के शाहीन आला किरदार अदा कयो वजीर आजम शहबाज शरीफ ए सदर आसिफ अली जरदारी जो फिजाए के दिहाड़े ते पैगाम सदर आसिफ अली जरदारी चयो त हकवारी जंग में साबित थियो त दुश्मन केडो भी ताकतवर हुजे असाजे अजम के शिकस्त नथो डेई सघे। वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त पाक फिजाए के शाहीन पंहिंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पाण मंझराई आहे सितंबर ए मई वारी जंग में दुश्मन के शिकस्त डि॒नी। लाहौर पुलिस पीटीआई जी गिरफ्तार अगवान हमाद अजहर जी गिरफ्तारी जाहिर करे छी। लाहौर पुलिस मूजिब हमाद अजहर अरड़ा केसन में घुर्बल आए ए टिन साल का रूपो शो जांच पुलिस हमाद अजहर के गिरफ्तार कयो आए हाणे हमाद अजहर के रिमांड लाए अदालत में पेश कयो वेंदो। कराची में शारा फैसल के परे ऑफिस बहरा एहतजाज करण त गिरफ्तार कल शहरी आजाद सोमालिया में सामुंडी धाड़ेल हथा जर्गमाल बणायल पाकिस्तानी के वारसन के पुलिस आजाद कर सामान भी वापस कर छो मुगविन के वारसन प्यार की आजादी ला एहतजाज कर। मीर रजा केस बाबत अदालती कमीशन आडो मीर रजा जा वारिस ए दोस्त पेश कमीशन मीर रजा के दोस्त हसीम का सवाल किया खबर पई तो मीर रजा गुम थी वो दोस्त जवाब दिनो तो मीर रजा की मंगेंदी बुधा तो आखिरी भेरों मीर रजा से मुलाकात 28 जुलाई ते थी हुई।

0: सकरणवे जो गोठ रहमुकिरियो में एचआईवी जा वधीक 13 नवा केस ज़ाहिर। गोठ में एचआईवी मरीजन जो अंग वधी 33 थी वयो। गोठण ने एचयूपी समेत मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻवाननि जो मुतासिर मरीजन जो इलाज न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज। मुतासिर मरीजन खे इलाजूं सहूलियतूं ऐं दवाऊं ॾियण जो मुतालबो। लाड़काणे जे एयरपोर्ट थाणे जी हद मां बि 2 वापारी अॻवा, बलेड़ जी वासी नवाब अली सुमरो ऐं संदसि दोस्त पीपी अॻवान दीदार अली गाली समेत अॻवा कयो वियो। अॻवा जे इतलाह बाद पुलिस जांच शुरू करे छॾी। ॿुधायो पियो वञे त मुगवीन जी गाॾी बलोचिस्तान वारे एरिया मां थाई आहे, जॾहिं त ॿिन्ही मुगवीन जा घर भाती सख़्त पर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: तहज़ीब सकाफ़त से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6।

0: बदन तो जो आवाज बदलता रहो बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

09 यू नंबर आज को तुम डायल करी सको था आई पंजी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था पंजी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो जी ताके खबर पे बाबा द डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाने हते भी मिले थी होते भी मिले थी ओ होते भी मिले थी ओके जी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी बारे में तो खोड़ सारे गालू तमासा कंदा रहंदा

0: और हमारे साथी जी सागर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। काफी वक्त खां पोए अज कार में रेडियो हलायो तो तमा जो प्रोग्राम हले पयो वो भला शामिल कयो प्रोग्राम में सुठड़ो गानो भी बुधरायो।
1: बिल्कुल जी
0: तमा के शामिल भी कयो पया ई ताके सुठड़ो गानो भी बुधायो पया। यो हालवाल जो ठीक ठाक आयो आई हालवाल जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम कने इस्तेमाल कयो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा लगायो बाबा सोना सोना थी वेना आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम सागर ताके डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली आयो है जेकी मानो सा के फेसबुक पे बुधन था ना उई जदी ही फेसबुक पे वीडियो दिसना हुंदा त तमा उन मा अंदाजो लगाए सको था द डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई डी स्किन जो को फेस वॉश आहे वो केडो सुठो आहे प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहे सो वन्यो आई वठी अचो। और अखलाक भाई कहते हैं दुकानदार रखे चो सिद्रा वाली क्रीम दियो न बाबा दुकानदार चलो केड़ी सिद्रा वाली क्रीम नालो बुधायो सो तमा उनके नालो बुधा तो बाबा अस डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण आया आयो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी पो वेंदासी आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने जा बहुत सारा फायदा है जेके तमा के मिलेगा जेडी तमा इस्तेमाल करा। अच्छा ये सस अगर मौजूद है गोठ बखू देरो बाकरानी ओके आगे तमाला छा लिखियो आए शेर खान जतोई से सगर मौजूद आए और अबू सर जतोई और समीना जतोई शानजे जतोई अम्हां के बुधू पया अदी की आयो असा तांजो खिलन वणंदो आए। अच्छा तांके खिलन वणंदो आए थैंक यू वेरी मच पर जदी तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल दना को तां सबनी के वणदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाजमी करे दिस जो आई अल्ताफ बलो जाग जानी हमारे साथी कहते हैं प्लीज ले शमन शमन हाजिर तांके बुधरायूं था आई डेडिकेट अजरा खोसो बिस्मिल एंड मी ओके थैंक यू। और कहते हैं दोबारा आपने अच्छा दूसरी फरमाइश अगर वो ना प्ले हो सके तो ये वाला लगा दीजिएगा डेडिकेट किया है डॉक्टर नजमा तबस्सुम बिस्मिल रफीक एंड मी ओके थैंक यू प्यारे चाचू को वेलकम कहते हैं। अच्छा कश्मीर से भाई आपने अखलाक भाई ने भी गाने की फरमाइश करी है क्या बात है जी गाना लगाती हैं आपका जुलरी खान खाले कलाशारी है केदे शो तवाजो वीआईपी आ शमन जो गानो बुधराए जो अंदाज तुंजा मुखे वणी व्या मां दिसा थी यो गानो अगर मिली वियो तो बिल्कुल तां के बुधराई था बाबा। और ऐसे शो खालिद अली हमारे साथ है खालिद आलम खान है ओके जी खालिद आलम खान मोहम्मद खान आप दोनों को वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और जी समीउल्लाह हमें सुन रहे हैं समीउल्लाह कहते हैं हाय हम कह रहे हैं हेलो मोहम्मद मीरन जकरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज से भाई जान कैसे हैं ठीक ठाक है। और हिदायतुल्लाह कहते हैं सलाम इतना बड़ा हाँ जी आप भी गोरे हो जाएंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे जी स्किन ब्यूटी क्रीम तो हिदायतुल्लाह लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। और लोबी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं वालेकुम असलाम सिदुरानी क्या हाल है मैं भी आपके साथ साथ हूँ नाइस यू थैंक यू वेरी मच लुबना। और गुलाब खान गुलाब गुल हमारे साथ हैं गुलाब गुल कहते हैं सलाम है मोहब्बत बाजी दादू सिंध से गुलाब गुल आपका शो सुन रहे हैं। और डॉक्टर कुर्बान अली कमरानी गुड शो नाइस होस्टिंग थैंक यू वेरी मच आप भाइयों को वेलकम कहते हैं। स्मार्टफोन लिखते हैं कि आपके नाम से होनी चाहिए क्रीम सिद्रा ब्यूटी क्रीम इतनी जबरदस्त लग रही है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तब कोई तमाम की खबर पड़ी वेंदी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केडो फायदो है आई तमाम की थदी मिलंदो ना जदे तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी दिसंदा आई मुखे ता यो बुधायो पे ता पानी खूबसूरती जो ख्याल की रखंदा हो वैसे खूबसूरती जो ख्याल तो हर केंके रखन घुर्जे अगर तमाम मर्द आयो तमाम खवातीन आयो हर कोई बाबा पानी खूबसूरती जो ख्याल रखे आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का वधिक अच्छा ही प्रोडक्ट आहे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो जे तांके खबर पई त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी वाह वाह अच्छा त रिजल्ट आहे।

साबिर भाई कहते हैं गिफ्ट कयो ना एक त लगाए दिसू फेस वॉश भी हा हा सब इते मुफ्त जे माल ते बैठा है पांजी वटो खबर पए वैसे एतरी महंगी कोने का ता मतलब थोड़ी कंजूसी कयो था कंजूसी न कयो बाबा पाने खूबसूरती सा केड़ा लेखा।

जी ॾाढो भलो गानो जेको असां इंजॉय कयूं पिया. प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डीज़ स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज़ स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं. अच्छा, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए, बाकी सारे दोस्तों को भी मेंशन कीजिए, उनको भी पता चले कि भाई जान मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम चल रही है. तो अभी अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए, वहाँ से मालूम लीजिए, आपको मिल जाएंगे. अगर नहीं मिल रहे तो जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम में वो जरा डायल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, उनको बताइए कि हम भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम और साथ में डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश हो जाएगा तो भाई क्या ही बात हो जाएगी. तो दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए. ओके जी, मैं इरफान सियाल साहब हमारे साथ कहते हैं नाइस शो, ग्रेट होस्टिंग एंड ग्रेट प्रोडक्ट डी स्किन ब्यूटी क्रीम. बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, कोई शक नहीं इस प्रोडक्ट में. भाई पाण असा इस्तेमाल कंदा आहियूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं पर्सनली हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त मुंहिंजो जीजू बि इस्तेमाल कंदो आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो एॾो वॾो फेन आहे. मां पुछांसि थी भाउ अहिड़ा ई समा चिमको था से बाबा इहो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां बि इस्तेमाल करणु चाहियो था त तव्हां पाण बिल्कुलु इस्तेमाल कयो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मुनासिब क़ीमतुनि में मिली रही आहे, थोरो पाण खे ख़र्चो कंदा कयो, ॾाढी सुठी ॻाल्हि.

वास साईं वा ॾाढो भलो गानो ॿुधोसीं। हिकिड़ो ॿियो गानो असांजी लिस्ट में आहे, ही जी गानो हूंदो मंज़ूर सखराणी जी आवाज़। हिन गाने खे बि ॿुधंदासीं ऐं ॾाढो भलो गानो आहे। धुम तनाना धुम तनाना जी तव्हांखे यादि ॾियारे छॾींदो। सोचो त एंजॉय कयो। प्रोग्राम सुन रखे वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो।

आंजी ही गानों ने मानो जलाया कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर पाया। अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए पे तो बुदायो बाबा बुदायो शर्मायो छोटा। अच्छा ये हमारे साथ है महबूब अली मोरो सिटी से, कहते सिस्टर सदरा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी कंपेयरिंग माशाल्लाह जीती रहे। और सदरा सॉन्ग सुनाए जिसमें तू न हुजे एड़ी दिल काडे कंदासी। अच्छा ठीक है, मां देसानी तवां जो गानो हली हो तो बिल्कुल हलायो था। अल्ताफ अलोट जाग जानी साचू लिखते हैं कि प्ले शमन हाजिर साचू हलायो था थोड़ो सबर कयो। मकसूद मला कहते हैं मैं तो ऐसा ही है बिल्कुल जी। अब आप चश्मा लगा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा।

0: अच्छा शामिल क्यों नहीं हो पा रहे थे? सही है जी, सिखो ना पो कदी सिखन दो बाकी। अच्छा सागर भाई कहते इंशाल्लाह वठी अचबो जरूर। यो ठीक आयो अल्हम्दुलिल्लाह मजे में तां बुदायो कारे गुम थी वेंदा आयो बाबा प्रोग्राम में शामिल थींदा रहंदा कयो ये मानो खबर पंदी आ त मार्केट में केड़ा केड़ा प्रोडक्ट हलंदा। अच्छा अगर एकड़ी या भी गाल आए मैं हमेशा तवा सा कंदी आ अगर तवा पाण कोई प्रोडक्ट नथा लगाए सको यानी कुछ मानन के सफा घणो स्किन जो प्रॉब्लम होंदो आए हु न कोई प्रोडक्ट लगाए सकना है तो चलो अगर तवा नथा लगाए सको तो तवा ही जके प्यारा प्यारा प्रोडक्ट आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम थी वई डी स्किन फेस वॉश थी वयो इन के तवा के ही पांजे पिरी प्यारे के गिफ्ट भी दई सको था समझो ना अगर तवा पाण नथा लगाए सको तो तवा के गिफ्ट दई सडियो यो माना बराबर थी दो हिसाब ता लगाए को वो लगाए तो तुम पान नथा लगाए सको तो तुम के प्यारे पीढ़ी के गिफ्ट करे सडियो वाह वाह थी वेंदी। अच्छा गुलाब भा तुम जो मोहब्बत है तुम प्रोग्राम आने पयो थैंक यू। अच्छा ये मुगल उमरानी भाई हमारे साथ हैं वेलकम कहते हैं भाई को चलिए यहाँ पर आप ये गाना एंजॉय कीजिए जरा। और बिलाल अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं वालेकुम अस्सलाम बिलाल अली। हम यहाँ पर ले रहे हैं जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए मैं सर यूं जाकर यूं वापस आती हूँ तो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: GAFM 88 Network, Zindagi Awaaz.
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: अमाजे पेंडे शहर सखर आई रोड़ी में
5: जिना अस्पताल कराची जो तरबियती याफ्ता
4: आई टीबी अस्पताल खैरपुर जो मशहूर
5: एलर्जी दमो टीबी फिफड़न आई छाती जे मुख्तलिफ बीमारियन जो माहिर
4: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो
5: चेस्ट स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट
4: माहिर अमराज
5: फिफड़न में ब्यारो फिफड़न में पानी आई फिफड़न में हवा भरजन
4: टीबी नमूनिया आई बारन में छाती जी बीमारी
5: मोटापे जे करे निंड आई साह में तकलीफ
4: सहको दमो सिगरेट नोशी खां निजात
5: बार बार नज़लो जुकाम खंग
4: आई बलगम में रत अचण वगैरह
5: क्लिनिक टाइमिंग हर छंछर का अरबा ताई शाम चई का सती वगे ताई डॉक्टर हॉस्पिटल तीर्थ रोड सख अस्पताल जे वे इंडस अस्पताल घोटकी में
4: मंझंद एक का शाम तालका अस्पताल।

जवां मेरी जान जहां है ये जिंदगी हसी जिंदगी का है निशान मेरी जान ए जाने जा

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज। उधर ना रहो।

क्या बात है, जिंदाबाद तेरी जवानी जिंदाबाद, बहुत ही प्यारा गाना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने पा जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी दर्दे दिल हमें ज्वाइन कर चुकी है और लिखती है कि चंदा चलो इस बात को तो छोड़ ही दें, और कहती मेरी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि मैं अपनी पसंदीदा इंसान के साथ बेतहाशा बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे पसंद नहीं तो मैं उसके सामने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर लेती हूँ। क्या ही बात है जी, बहुत बढ़िया, आपको वेलकम की थी स्वीटी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं जी मायरा, हमारा शो सुन रही है। मायरा वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, कहती है मैं भी बाजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाऊंगी। और आप बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा, वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा, ऐसा वाला सीन बन जाएगा ना, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना माइक्रो बीट्स हैं, वाइटामिन ई बीट्स हैं, और ये जो तमाम चीजें हैं ना, ये जब इसके अंदर एड की गई है तो क्रीम की जो खूबसूरती है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगी ऐसी वाली खूबसूरती जो कि खवातीन बहुत ज्यादा महंगे महंगे फेशियल करवाने के बाद भी नहीं हासिल कर पाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपका टाइम भी बचाएगी, आपके पैसे भी बचाएगी, और आप घर बैठे मुकम्मल खूबसूरत हो जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छे वाले रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप ट्राई करके देखिए, जो कि एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और जनाब उसके अलावा मर सकता है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं।

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे सॉन्ग सुनकर कोकिला याद आ गई वही तो मैंने पहले ही बोला था। फरवा गुला में सुन रही कहती हैं आप ही आपका शो बड़ा सच फरवा। और बिलाल कहते हैं कोई प्यारो पिरी कोने को छो भला कोने को इन्हीं सफा ये न क्यों बाबा।

महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ कहते हैं कुंज आप सॉन्ग भूल गई। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। चले अगर आप मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो आपका गाना लगाएंगे, नहीं तो मैं कल आने वाली हूँ ना, तो कल आपका गाना सुनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है। अच्छा फरवा आप हमें सुन रही हैं तो आपने जो गाना बोला था ना वो मैं आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुना दूंगी। वैसे जो आपने फरमाइश करी थी वो इस तरह की थी, वो टोन उसका ऐसा था कि वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में ही सुना जाए तो अच्छा था। ओके जी, आप क्या करेंगे, फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ हैं जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। ऐसे ये होता है कि भाई हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं ना उन तक हमारा प्रोग्राम पहुंच जाता है और वो भी इस चीज को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि उनको अपनी स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, खूबसूरती के मामले में कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, और खूबसूरती के मामले में अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो क्या ही बात है जनाब। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अच्छे से जानते हैं जनाब, मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार किया गया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती जो आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। चाहे आप खवातीन हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, हर किसी के स्किन के हिसाब से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जानते ही जरा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आरबुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें एड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। तो जान लें और पहचान लें कि इतना प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो फायदा उठाइए।

जी ओ जी, बड़ा प्यारा गाना था जो हमने एंजॉय किया, और इसी के साथ साथ एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि शायद बब्बर की आवाज में होने वाला है। इस गाने की भी किसी भाई ने मुझे फरमाइश कर दी थी, तो जरा हम मिलकर एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हैं जी रमीज, नहीं रमजान अली भाई। रमजान भाई कहते हैं कि दिल लगी में दिल गया, मुझे दिल लगाने का नतीजा मिल गया। अरे मैं रोता हूँ, मेरा दिल गया, तू क्यों मुस्कुरा रही है, तुझे क्या मिल गया। क्या बात है जी, क्या बात है। और फरवा की थी, आप ही ठीक है, थैंक यू वेरी मच फरवा। अखलाक भाई कहते हैं मूव इट, शेर जो ऑप्शन ना है ये न क्यों बाबा, सभी में ऑप्शन आई, ये बहानेबाजी बंद करो। और रमजान भाई कहते हैं बहन इतने दिन कहाँ गुम थी आप, मैं तो यहीं पर थी। और ये चाचा खालिद कहते हैं अल्लाह हाफिज बेटा से जो टेक केयर। आप भी चाचा अपना ख्याल रखिये, वैसे आपने अपनी तबियत के बारे में तो बताया नहीं। फिर कहते हैं कि भाईटी वेगी भाईटी मुझे तबियत जो पूछे गुम थी। अच्छा रशीद कोसू भाई कहते हैं बहुत अच्छा बलोची सॉन्ग है ना, बहुत अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आप सारे भाइयों को वेलकम कहते हैं। वैसे भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करके देखिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत सेटिस्फाइड है, तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए। फसली कहती है ओए प्यारी लगता है, पता नहीं अब क्या मसला है, कुछ तो है, लेकिन चलें फिर आप भी स्किन ब्यूटी क्रीम जो ना वो इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है।

0: वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है जी मुनासिब सी कीमतों में, बस अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहाँ से मालूम लीजिए मिल रही है तो बढ़िया, नहीं मिल रही तो जो नंबर आपको बता रहे हैं उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा। भाई साहब का जीना हराम कीजिए जब तक आपके करीबी जनरल स्टोर पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं करा देते, तो जल्दी से नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि फलां जगह पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है। और इसी के साथ साथ वरी तमाम से मुलाकात मुझे थे पई बाबू पंज बजे वाले प्रोग्राम में, सो पांच ओ हिडो सरो ख्याल रखना, किथे का गलती थी हुए तो माजरत कयूं था, जरा फीडबैक रहिजी वया है, जिनजा गाना रहिजी वया है, सभी का माजरत कयूं था, सो मोकलानी ना ही बाबू, सन सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।
1: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: आप सुन KTN
1: ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई
2: साहब, आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के
3: उसके बाद
2: आप लोग खैराती मैंडेट में आके बैठ के आप बैठ के कौम के फैसले नहीं करोगे
3: जी साहब।
2: जो सर ये खैराती मैंडेट में बैठे हुए लोग हैं, ये कौम के फैसले नहीं करेंगे। कौम के फैसले इलेक्टेड।
3: नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस दोज हु आर फॉर
4: खैराती मैंडेट ते आयल वफाकी वजीर अरणी तरमी महसूबन ते ॻाल्हाए रहिया आहिनि। खैराती मैंडेट ऐं फॉरम 47 ते आयल को कंदा पहिरीं अवाम वटि वञनि, मैंडेट वठनि पोइ ॻाल्हियूं कनि। क़ौम जा फैसला फॉरम 47 वारा नंबर अवाम जा चूंडल नुमाइंदा कंदा। सिंधी असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद चयो आहे त वफाकी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि त खेन जवाब बि मिले, बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु बि न थींदो। वफाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु बि मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरे मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोड शेडिंग। सदर आसिफ अली ज़रदारी यूरोप जो छॾियो, सुभाणे ॾे वापसीअ जा इम्कान। ज़रीन जो चवणु आहे त सदर आसिफ अली ज़रदारी ॿिनि ॾींहनि लाइ फ्रांस वञणो हो। हाणे सदर फ्रांस जो दौरो मुलतवी करे सुभाणे लंडन खां ॾे वापसि अचण जो फ़ैसिलो कयो आहे।

0: पाकिस्तान कश्मीर बाबत भारतीय बयान के रद्द करे छो आलमी बिरादरी का नोटिस जो मुतालबो कर रही आफिस मौजूदे की तरफ का तकरारी कदम अलारियल कश्मीर की हैसियत का तब्दील नथा करे सघन। ये मामलो गड़ियल कौमन की सलामती काउंसिल की एजेंडा जो हिस्सो है। भारत कश्मीरी आवाम के हक डेण का वायदा पूरा करे। सितंबर ए मई वाली जंगन में पाक फिजाए के शाहीन नाला किरदार अदा कर वजीर आजम शहबाज शरीफ ए सदर आसिफ अली जरदारी जो फिजाए के डियारे से पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी है हक वाली जंग में साबित थो तो दुश्मन कड़ो भी ताकतवर हुए असा के अजम के शिकस्त न तो दई सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो तो पाक फिजाए के शाहीन पैंजे पेशावरानी सलाहियत महारत पा में सितंबर ए मई वाली जंग में दुश्मन के शिकस्त दिनी। लाहौर पुलिस में घुर्बल ताज पुलिस हाने अहमद अजहर के रिमांड। सिंध हाई कोर्ट धोटकी के फहमीदा पिताबी केस की बुधनी फहमीदा के बाजियाब न कराने अदालत पारा डीआईजी सखर मथा कावड़ जो इजहार। अदालत आईजी सिंध के इंदर हफ्ते तलब करे वरतो। अदालत चवाए तवा औरत के बाजियाब न करायो तवा छो आया आयो आईजी सिंध के पेश करणो हो। मीर रजा केस बाबत अदालती कमीशन आडो मीर रजा जा वारिस ए दोस्त पेश। कमीशन मीर रजा के दोस्त का सवाल कयो तवा के किए खबर पई तो मीर रजा गुम थी वयो आहे। दोस्त जवाब दिनो तो मीर रजा जी मंगेंदी बुधायो आहे ता आखिरी भेरो मीर रजा सा मुलाकात 28 जुलाई ते थी हुई। कक्कड़ भरसा कलोई बिरादरी के बिन धुरी में थियल झेड़े दौरान मारजी वे नौजवान के वारसन जो लाश रखी धरणो। नौजवान जाफर कलोई के वारसन लाश रखी धरणो आयो। नौजवान के कतल कदड़ जवाबदारन खिलाफ केस दाखिल कर गिरफ्तार करण जो मुतालबो एहतियात जारी रखने जो चेतावनी। सकरण वेझो गोट रेमो किरियो में एचआईवी जा वधीक 13 नवा केस जाहिर। गोट में एचआईवी मरीजन जो अंग वधीक 30 थी वयो। गोठन समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी अगवान जो मुतासिर मरीजन जो इलाज न थियण खिलाफ एहतजाज। मुतासिर मरीजन के इलाज जो सहूलतू ए दवाओं देने जो मुतालबो। लाड़काणे के एयरपोर्ट थाने की हद में ब व्यापारी अगवा। परड़े की वासी नवाब अली सूमरो ए संदस दोस्त पीपी अगवान दीदार अली बहन गाड़ी समेत अगवा कयो वयो। अगवा के इतला बाद पुलिस जांच शुरू कर छी। बुधाय पो वे तो मुगविन की गाड़ी बलूचिस्तान वाले एरिया में हथाई है जडे त बिन्हीं मुगविन जहा गर्भाती सख्त परेशान है। दड़ो भरसा कतल गोट मौलवी अहमद भरसा जवाबदार खलील मंगसी फायरिंग करे भेण दुआ के कतल कर जवाबदार फरार कारण मालूम न थो। सदर कोर्ट में क्रिकेट रांद खेलण दौरान बारन की गाल तां झेड़ो लठ में सरोता लगन सबब अठ जणा बिरादरी के माण्हुन में झेड़ो थियो। लगारी बिरादरी के माण्हुन केस न थियण खिलाफ केस दाखिल कर जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो। फेसगंज ए भरपासे में मंशियात के आधार खिलाफ शहरन जो पका चांग में एहतजाज। इलाके में मंशियात जहां मौजूद अडा बंद करण जो मुतालबो चो तो मंशियात गुटे में हली रही है। शहरन सां गड गोठन में भी मंशियात जहा अडा कायम किया व्या मंशियात विक्रो करण खिलाफ कार्रवाई कई वे। थरपारकर जो सूफी बुजुर्ग हरदास भक्त जो गादी नशीन भक्त माथूराम ध्यान करे वयो। सोग में मिठी शहर बंद माथूराम जो आखिरी रस्मों अज अदा कई वी। इंटर की शागिर्दानी अरूसा खोसो के तंग कंदड़ो बाद हुसैन बख्श खोसो की फरियाद से पिंजो पुलिस जुनेद खोसो ए सरफराज खोसो से केस दाखिल कर भरसा कौमी शाहरा से ऑयल टैंकर जो कार के टक्कर वजण कल मुंतकिल बिरया रोड में कराची का लाहौर विंदर तेज गांव पोती नौजवान की सुण बिरया रोड वासी अब्बास पुट कदीर मलिक के नाले से कई गई।
1: KTN News। मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो 91.6।
2: हक सच जो आवाज गीत तैयारी 8.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: कलंदर लाल शहबाज
4: उसी बनी
3: नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज गीत से हैदराबाद सिंध जो आवाज उतरदा रहो
1: है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: ढोला बिछड़ गया।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल से एक
2: आवाज,

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: संगीत जो हथियारी 1.6 जो आवाज उतरदा रहो
1: है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खिते की बनी है आवाज
1: GA FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
3: बात कर रहे हैं जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, अनफॉर्चुनेटली वो वफाकी की बात कर रहे हैं जो धांधली की पैदावार है, वो बैठ के तनकीदें कर रहे हैं, वो बैठ के बात कर रहे हैं, वो 18वीं सदी में बात कर रहे हैं। आप लोग पहले अवाम में जाओ, अवाम से इलेक्ट होके आओ, अवाम के वोटों से जीतो, फिर आके
4: उसके बाद
3: आप लोग खैर बैठ के
4: शर्जील साहब
3: के फैसले नहीं करें, कलेक्टेड लोग।
4: शर्जील साहब मुझे मोशन पुट करने दे, नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस दोज हु आर फॉर।
5: खैराती मैंडेट ते आयल वफाकी वजीर अर्ली तरमीम में सूबन ते गालाए रहा है, खैरी ही अवाम वट वन मैंडेट वठन, कोई कौम जा फैसला फॉर्म 47 वाला न पर अवाम जा चूंडियल नुमाइंदा कंदा। सिंध असेंबली में गालाईंदे सीनियर वजीर शर्जील नामेमन चयो आहे त वफाकी वजीरन के गालाइणो आहे त पार्लियामेंट में, न त खेन जवाब बे मिली वेंदो, बाकी मीडिया ते गालाइण सां कुझ न थींदो। वफाक सिंध में 77 सालन खां हिकु बि मोटरवे नाहे ठाहियो, सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी, बिजली बि सिंध समूरी मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोडशेडिंग सभिनी खां वधीक आहे।

सदर आसिफ ज़रदारी यूरोप जो दौरो मुख़्तसर करे छॾियो। सुभाणे ॾेह वापसीअ जा इम्कान। ज़रियनि जो चवणु आहे त सदर आसिफ ज़रदारी ॿिनि ॾींहनि लाइ फ्रांस वञणो हो। हाणे सदर फ्रांस जो दौरो मुल्तवी करे सुभाणे लंडन अचण जो फ़ैसिलो कयो आहे। असांजे असासन खे निशानो बणायो वियो त ख़िते में मौजूद अमरीकी असासा बि महफ़ूज़ न रहंदा। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाफ अमरीका खे ख़बरदार कंदे चयो आहे त तेहरान पंहिंजी जवाबी सलाहियत साबित करे चुको आहे। ईरानी असासनि ते हमलनि जो जवाब अमरीकी तेल ऐं गैस कंपनियुनि ते हमला करे ॾिनो वेंदो। अमरीका सां इतिहाद अहम आहे पर अरब मुल्कनि खे पंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ पाण भरो थियणो पवंदो। कतरी परॾेही वज़ा

इंसान खे सभ खां वधीक जेका ख़ुशी हूंदी आहे पंहिंजा तोड़े परावा उहे ॾींदा आहिनि जेके सजण थी बीहंदा आहिनि। ऐं दुनिया में सभ खां तकलीफ़ वारो अमल इहो आहे त इंसान जेकॾहिं को कंहिं लाइ सड़े थो, को कंहिं सां हसद करे थो, हासिद जेको आहे सभ खां वॾी तकलीफ़ में हूंदो आहे। छाकाणि जो हसद पंहिंजे ख़ुशियुनि खे त ख़तमु कंदो आहे, पर हासिद जेको हूंदो परायनि ख़ुशियुनि ते हुई बि जलंदो रहंदो आहे, हुनखे सुकून न आहे हूंदो। अल्लाह ताला जे तरफ़ा ॾिनल इंसान खे केॾी बि ख़ुशी हुजे पर हासिद खे ख़ुशी नसीब न आहे थींदी, छो त हू ॿिए ते हसद करे थो। हुनखे भले 10 ख़ुशियूं मिलियल हुजनि पर उन खां कंहिं माण्हूअ जी हिकड़ी ख़ुशी बर्दाश्त न आहे थींदी। इन करे तव्हां ॾिठो हूंदो त हासिद सॼो ॾींहुं हसद में सड़ंदो पचंदो रहंदो। उन करे हसद न करियो, मोहबत करियो ऐं दुआ ॾियो। जेकॾहिं कंहिंखे ख़ुशि था ॾिसो त उन जे लाइ दुआ कयो, अञा बि बाग बहार हुजे उन जे सदिके अलाह पाक तव्हां खे बि ख़ुशि रखंदो। ॻाल्हियूं असां खोड़ कबियूं ऐं टेलीफोनिक ॻाल्हियूं तव्हां सां थींदियूं, उहे त थींदियूं ॿिए कलाक में। पहिरें कलाक में अॼु असीं चाहियूं था त तव्हां असांखे कुझु मैसेज मोकिलियो, त पोइ ॾिसूं था केरु हूंदो असांखे ॿुधे थो। उन जे लाइ असां मैसेज पेड ते हलंदासीं। तव्हां टाइप करियो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888 यानी 8881 ते असांखे मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। ॾिसंदासीं त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो शामिल, त पोइ अवांजा मैसेज शामिल करण जे लाइ यकीन प्यार ऐं पंहिंजे रंगनि में हलूं था, ॾिसूं था त असांखे मैसेज कंहिं कंहिं मोकिलिया आहिनि। जी जनाब,

बुढ़े इस्माइल खान का असि बुधे पे अलण खान अला बचायो। अच्छा जी अला बचायो असि बुधे तो रोतकानी साहब अला बचाया कड़ा हाल खुश आयो ठीक आयो चंगा भला गोठ शहीद मोहम्मद फाजिल राहू खां जुमन खासकेली साहब बुधे पे जुमन भा मेहरबानी भलीकार तवां लिखियो है डियर ब्रादर यूनिस सलाम वालेकुम सलाम थैंक यू भलीकार वेलकम मई वडा वड़ मिठा मानो ओके जनाब साज़ ऐं आवाज़ जी साथ में अवां शामिल थियण जे लाइ हाणे ई मैसेज करे छॾियो ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो शामिल थियण जे लाइ मैसेज ते सो तव्हां बिना देर जे मोकिलियो मैसेज अॼु असीं ॾिसंदासीं असां सां गॾु केरु थो शामिल थिए। ओके जनाब त पए झलूरी खां ख़ालिक लाशारी ज्वाइन कयो आहे तमामु घणी मोहबतूं मिठा माण्हू अव्हां खे भलीकार चवंदासीं। जाम खान लगारी खां अली रज़ा लगारी ॿुधे पियो आकिब ॿुधे पियो अव्हां सां गॾु अव्हां जी तमामु घणी महिरबानी अव्हां खे बि चवंदासीं भलीकार थैंक यू ऐं अज़हर लगारी अव्हां सां गॾिजी ॿुधे थो मोहबतूं वॾा वड़ ऐं पाबो वीर थर खां असांखे दिलीप कुमार मेघवाड़ ॿुधे थो नोवल राय ऐं अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं दानिश कुमार तव्हां सां गॾु ॿुधे थो सूरज गुल थैंक यू भलीकार शंकर लाल बसंग ॿुधे थो अव्हां शो चयो आहे सुठो आहे मां थोराए थो आहियां तव्हांजो तव्हांखे शो सुठो लॻे थो बसि ॿियो छा घुर्जे। हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली झंडे मरी खां कुर्बान अली ख़ासकेली यादि कयो आहे तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हां मुंहिंजे लाइ दुआऊं मोहबतूं प्यार ऐं पंहिंजा रंग मोकिलिया मैसेज में तमामु घणियूं मोहबतूं ऐं प्यार तव्हांजो क़बूल पियो मिठा माण्हू थैंक यू। ऐं सरफराज़ जरवार असांखे यादि कयो आहे तमामु घणियूं महिरबानी खिपरो खां तमामु घणियूं महिरबानी जी असांखे सुमार भील ॿुधे पियो दिलीप कुमार मेघवाड़ ॿुधे थो ऐं अब्दुल हकीम बजीर ॿुधे थो अवां लिखियो शाल सलामत हुजो आमीन सुम आमीन ऐं अमीब जो बाग बहार शाल ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो शाल अवां जी मुर्क मेरी न थी। साईं मुंहिंजे जुगनि खां जीअरी महिराण माथिरीअ जे मलुक मिटीअ ते जिते जिते तव्हां रहो पिया तव्हांजी ख़ुशीअ जा ख़्वाहिशमंद आहियूं असां ऐं GFM 88 रेडियो नेटवर्क जी तमामु टीम तव्हांजे लाइ दुआगू आहे। अवां यकीन जिते जिते हूंदो ख़ुशि हूंदो त असां बि ख़ुशि हूंदासीं अव्हांजी ख़ुशी में ई असांजी ख़ुशी आहे। साईं मुंहिंजे को वक़्तु कहिड़ो को वक़्तु कहिड़ो पर जंहिं वक़्त में पंहिंजा वक़्त ते न पहुचनि ऐं पंहिंजा परावा महसूस थियनि ऐं सजण सार न लहनि त पोइ तकलीफ़ थींदी आहे ऐं अहिड़ी उदासी अहिड़ी तकलीफ़ जलाल चांडीअ जे हिन ट्रैक में मौजूदु आहे

जी जनाब साथ में आवाज़ साथ में उनके आगे जो असो कमर्शियल ब्रेक वूँ का गॉल क्यों अं चाहूँ था जबरदस्त ट्रैक प्ले कर कमर्शियल ब्रेक न हलूँ तेज से मैसेज मोकले था सनूबर मैसेज मोकलो लिखो छवन मीराली जो ट्रैक है बुधा उन बोल लिखी मोकल वो समझ में को पे अचन प्लीज एक दफा बेहर रिपीट मैसेज कजो जी जी भेनर भाई असन था प्लीज जैसे तक सॉन्ग प्ले कर रिक्वेस्ट मोकल रिक्वेस्ट मोकलो इन तरीके से जो सॉन्ग जहाँ पे बोल उन लिखी अचन बहरहाल वूँ था ट्रैक इन शॉर्ट ब्रेक का वापस अची नो कमर्शियल ब्रेक हों बिना ब्रेक यूनिट बकारी वापस अब डेढ़ कलाक वन साथ।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी सीधा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खिते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

सहतो बि दे पियो आसिफ़ सहतो बि दे थो सहतो बि दे पियो ॻोठु हाजी सहते खां ऐं असांखे ॿुधे थो सिराज ख़ासि केली सभिनी मिठनि माण्हुनि खे भलीकार ख़ुश आमदीद वेलकम चवंदासीं सोणा साईं अव्हां खे जी जनाब ही मोहबती माण्हुनि जो मेलो ऐं यकीन सिंधड़ीअ जी शाम सिंधड़ीअ जी शाम में यूनुस बकारी जो सलाम सो ॾिसूं था त असां सां गॾु हाणे हूंदो केरु ओठे इस्माइल खान लोतकाणी खां असांखे ज्वाइन कयो आहे अलॻि चयो लोतकाणी ऐं महिरबानी

छतर मोरी का असन ज्वाइन कयो आहे किशोर कुमार अवानी भलीकार अवानी मेहरबानी हीरा लाल अवा सके जी बुदे तो मोहब्बत हीरा लाल आई पवन कुमार तमा सबनी जो मोहब्बत ही भलीकार इस्माइल खान रोतकाणी खा अलाबजे रोतकाणी भा अवा ने ब मैसेज घर घर पहुंचा मोहब्बत थैंक यू वेरी मच आई मोजिस खातिन हजरात साज आवाज साथ में अवां सण अवां जो गालियूं जारी आहिन ऐं अवां बि जेकॾहिं चाहियो था शामिल थियण त मैसेज मोकिले सघो था लिखंदो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो ऐं 888-188-81 ते असांखे हाणे हाणे मैसेज मोकिलियो त ख़बर पवंदी त असांखे केरु किथां खां यादि करे पियो सजण सांगीअ जी वांढ मां असांखे गुलाब गुल ॿुधे थो गुलाब गुल तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी भलीकार लुटको मोरी सांगड़ खां ॿुधे थो मोहम्मद साले लगारी लालबख्श बिलावल लगारी अवां जूं तमामु घणी महिरबानी उसामा लगारी अवां सां गॾु ॿुधे पियो किरोड़े कृप तव्हांजा खुश हुजो आबाद हुजो थैंक यू ऐं असांखे यादि कयो आहे जी जनाब ॻोठ आलम खान जरवार मोहम्मद अज़ीज़ जरवार साहब अवां लिखियो त तबियत सही आहे मिठा माण्हू बिल्कुलु तव्हांजे दुआउनि सां तबियत बिल्कुलु ठीकु ठाक तव्हां ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो ग़ुलाम हुसैन जलालाणी ॻोठ खां जी जनाब नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी असांखे ॿुधे पियो ऐं तमामु घणियूं महिरबानी भलीकार महबूब नाज़ जलालाणी ॿुधे थो ऐं थैंक यू मुख़्तियार नाज़ जलालाणी ॿुधे थो ऐं आरज़ू असलम जलालाणी किरोड़े कुर्बे अवां लिखियो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मिठा माण्हू मोहबतूं तव्हांजूं शाद हुजो आबाद हुजो ऐं बिल्कुलु ठीकु ठाक हुजो सदाई सुखिया हुजो ओके जनाब त पोइ साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में अवां असांखे यादि कयो पिया त हाणे हाणे लिखो जिन जिन महिरबानी खे तरीक़ेकार ॿुधाइणो आहे जल्दी सां नोट करे वठो लिखो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88-81-888 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो 88-81 साईं नंबर हूंदो जंहिं नंबर ते पर शुरूअ में MTI लिखण बिल्कुलु न विसारजो छो त MTI लिखंदो तॾहिं मैसेज असांजे स्टूडियो जी स्क्रीन ते पहुचंदो नोटो खां थरपारकर खां असांखे ज्वाइन कयो आहे रामचंद कुमार कोहली ऐं अवां सां गोविंद गुल ॿुधे पियो तमामु घणी महिरबानी थैंक यू अव्हांखे बि चवंदासीं भलीकार रामचंद ऐं जनाब असांखे डीपलो जे ॻोठ झपियो खां ॿुधे थो मोहम्मद सिद्दीक पाढ़ो रोशन अली पाढ़ो अवां लिखियो अस्सलाम वालेकुम

वालेकुम असलाम मिठा माण्हू किरोड़े कृप तव्हांजा जो तव्हां असांखे ॿुधो पिया ऐं सदाई सुखिया हुजो महिरबानी तव्हांजो भलीकार भलीकार चवंदासीं तव्हांखे जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ में हिकिड़ो नंढो ब्रेक आहे ऐं वठूं था ब्रेक पहिरीं शॉर्ट ब्रेक वठी वठूं वरी अची वञे मैसेज शामिल कंदासीं त पोइ सुरैया सुमरो जो आवाज़ आहे गॾु ॿुधी था वठूं त छा थी चवे सुरैया हिन ट्रैक खे इंजॉय कजो जिते जिते ॿुधो था तव्हां ॿुधो पिया लाड़काणू सखर मीरपुर ख़ास मोरो मेहरापुर सकरंड मटियारी या मातली में जिते जिते तव्हां असांखे ॿुधो पिया बदीन खां बखर सीराणी खां सखर कींजर खां कारूंजर ऐं केटी बंदर खां कश्मोर ताईं गूंजंदड़ हिकु आवाज़ GFM 88 रेडियो नेटवर्क

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अमड़ सिंध के सींध में एक चमकंदड़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है एनपीएस। तीन की ताकत में मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जी FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच
1: नंढड़ी रवीना ॿुधे पई ऐं कमलेश ॿुधे पियो ऐं रजीना कुमारी ॿुधे पई अवां जो तमामु घणी महिरबानी ऐं रामचंद कुमार बि ॿुधे पियो भलीकार चवंदासीं सभिनी खे थैंक यू मटियारी खां सनोबर जो मैसेज पहुतो अवां जूं महिरबानी भलीकार अवां लिखियो त शमन जो ट्रैक ज़रूर ॿुधाइजो बिल्कुलु असांजी क्यू शीट में शामिल आहे शमन अवां ॿुधजो त तव्हांखे उहो गानो कीअं थो लॻे साथ में अवांजा मैसेज अवांजो साथ आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क तां अवां असांखे लाइव ॿुधो पिया जेके महिरबानी रेडियो सेट इंटरनेट ऐं फेसबुक ते ॿुधनि पिया सभिनी जूं मोहबतुनि जेकॾहिं अवां असांखे ज्वाइन करे चुका आहियो ऐं हा जेके महिरबानी परडे॒ में असांजे लाइव शोज खे ॿुधण चाहिनि था उन लाइ असांजी लाइव स्ट्रीमिंग आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे तव्हां गूगल ते सर्च कंदव असांजी सॼी एप्लीकेशन तव्हांजे साम्हूं हूंदी जेके बि अठनि स्टेशननि मां तव्हांखे जेका स्टेशन वणे थी उनखे तव्हां लाइव ॿुधी सघो था ऐं जेके असांजा शो जेके नेटवर्क जा हूंदा उहे त तव्हां जंहिं स्टेशन खे क्लिक कंदो तव्हां सां गॾु हूंदासीं सची पची त पोइ जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे गूगल ते बि सर्च करियो दुनिया जे कुंड कुर्छ में अवां सां गॾु जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जेको सिंध जो आवाज़ आहे सिंध जूं सदाऊं खणी अवां ताईं पहुचनि ज़िंदगी मुंहिंजी ठहे जे तूं अची लोक वाधायूं ॾे जे तूं अची ज़िंदगी मुंहिंजी ठहे जे तूं अची लोक वाधायूं ॾे जे तूं अची दिलि भरे करियां मां दीदार तुंहिंजो प्यास नेणनि जी लहे जे तूं अची सो जनाब साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त सुठियूं ॻाल्हियूं सुठा गाना सुठा ट्रैक ॿुधण सां माण्हुनि खे सुकून मिलंदो आहे ही ट्रैक गॾिजी ॿुधूं था अव्हांखे कीअं थो लॻे ॿुधाइजो मैसेज में जल्दी जल्दी मैसेज कजो छो त हिन खां पोइ जेको कलाकु शुरू थींदो न्यूज़ खां पोइ उहो हूंदो कॉल्स वारो ऐं हा कॉल्स जे लाइ असीं तव्हांखे नंबर ॿुधाईंदा उन ते कॉल कजो जेको नंबर न ॿुधायूं उन ते न त पोइ ट्रैक आहे ब्रेक आहे बिना ब्रेक यूनस बकारी वापसि ईंदो छो त प्रोग्राम आहे जारी ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अवांजो पंहिंजो यूनस बकारी

कीअं लॻे अव्हांखे अॼु शो ज़रूर पंहिंजी राय खां आगाह कजो अवन मैसेजिस अवांजी मोहबत अवांजी प्यार अवांजी पंहिंजाइप आहे शामिल अॼु शो में त पोइ ही आवाज़ ॿुधो हिन आवाज़ में ट्रैक में अव्हांखे छा पियो महसूस थिए दर्द हज़ार ॾिनई मूंखे त बीमार कयई फौज़िया सुमरो जो ही आवाज़ जेको दर्द ॾे ऐं वरी पुछे हाल अहिवाल त हाणे कहिड़ो हाल अथई त पोइ छा थींदो केॾा न यादगार ऐं शानदार गीत फौज़िया सुमरो ॻाया हुया ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त फौज़िया सुमरो सेप्टेम्बर महीने जी 4 तारीख़ ते हिन खां असां खां तकरीबन 20-22 साल अॻे जॾहिं विछड़ी वई हुई पर हुन जा गीत सदाई सिंध में गूंजंदा रहंदा सो हुनजो ट्रैक ॿुधी वठो यूनिस बकारी बिना ब्रेक वापसि ईंदो ऐं असां ॻाल्हियूं कंदो रहंदो छो त थोरो टाइम बचो आहे न्यूज़ में

जी जनाब न्यूज़ ब्रेक जो टाइम थी वयो आ तांगे डेहे तोड़े परडेह जो खबरों बुधराइण लाए संजे सेंट्रल स्टूडियोज जी पेशकश ता वठी दालू जेता केटीएन न्यूज़ बुधराइंदा सी वापस इंदा सी आई हां पूरो कलाक टेलीफोनिक गुफ्तगू थिंदी पर अवां के नंबर बुधाइंदा सी ब्रेक खां पो केडे ना वंजो छो त प्रोग्राम आए जारी हो सारी नंडड़े ब्रेक खां पो वापस इंदो अवां जो पंजो यूनुस बकारी शो आए सिंध डीए जी शाम।

अनुशासन न थियण घुर्जे। ये संजीदा मामलो आहे, बहस थियण घुर्जे। सलमान अकरम राजा चयो त 73 जे आईन खिलाफ़ वञी सूबनि जे विरांगे जी हिमायत न कंदासीं। आईन में वाज़े आहे त सूबे जे विरांगे लाइ लाॻापियल सूबे जी असेंबली ई मंज़ूरी ॾींदी। मुल्क में आईन जी बालादस्ती, कानून जी हुकुमरानी ऐं अदलिया जी आज़ादी बाबति कराचीअ में सिंध हाई कोर्ट बार जो सेमिनार। सिंध जे इम्काने विरांगे जी सख़्त मुखालफ़त। मुल्क में आईन ऐं कानून जी बालादस्ती क़ाइमु करण जो बि मुतालबो। वकील अॻवाननि चयो त मुल्क आईन खां सवाइ नथो हली सघे, कानून जी हुकुमरानीअ खां सवाइ अवाम जी भलाई मुमकिन नाहे। सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। हर महाज़ ते मज़ामत कंदासीं। सिंध हिक सद जो इंतज़ार करे रही आहे। सिंध विरहण बदिरां मकानी इदारनि खे मज़बूत कयो वञे। सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जी आवाम सां गॾु हूंदुसि। सिंध खे विरहण ख़िलाफ़ रत जी ज़रूरत पई त पहिरियों रत जो फुड़ो बि मुंहिंजो हूंदो। कराचीअ में वकीलनि खे ख़िताब कंदे ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी चयो त इज़त ॾियण सां सिंध जी आवाम खे सलाम पेश कयां थो। सिंध असेंबली समेत सभिनी असेंबलियुनि खे जाली समझूं था। जेकॾहिं ही हुकमरान सिंध सां सचा आहिनि त असेंबलियुनि मां इस्तीफ़ा ॾियनि ऐं असां सां गॾु रोडनि ते अचनि। सिंध जे असांजे असासनि खे निशानो बणायो वियो त ख़िते में मौजूद अमरीकी असासा बि महफ़ूज़ न रहंदा। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कोलिबाफ अमरीका खे ख़बरदार कंदे चयो आहे त तहरान पंहिंजे जवाबी सलाहियत साबित करे चुको आहे। ईरानी असासनि ते हमलनि जो जवाब अमरीकी तेल ऐं गैस कंपनियुनि ते हमला करे ॾिनो वेंदो। अमरीका सां इतिहाद अहम आहे, पर अरब मुल्कनि खे पंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ पाण भरो बि थियणो पवंदो। कतरी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त रुगो अरब मुल्कनि खे अमरीका ते भाड़ण बदिरां स्ट्रेटजिक मामलनि में पाण भरो थियणो पवंदो। सिक्योरिटी मामलनि में वधण सां ई दिफ़ा यकीनी बणाए सघिजे थी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: दिल बदली करे डे डॉक्टर मुझे तंग थी करे सो दिसुंदा फिलहाल कॉल ते केर है सदा गड बाकी गालियों कयूं था गड गड हेलो अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला केर साहब आई किथां का रुस्तम छा हाल है खुश आयो ठीक आयो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु केर पियो ॿुधे अच्छा अच्छा महिरबानी लख थोरा मिठा माण्हू लख थोरा ख़ुशी जो जी जी हलो अस्सलाम वालेकुम छा हाल है दिलीप कुमार शुक्र अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई आहे हलो अच्छा आवाज़ में शायदि को मसलो आहे ॾिसूं था हाणे काल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब किथां खां शहज़ाद थोरो ज़ोर सां ॻाल्हाए हा शहज़ाद ॾंगणो पियो ॻाल्हाए शहज़ाद तलहार जे वेझो ॻाल्हाई पियो उन खां ॾंगणे जे ॻोठ मां हा अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे रेडियो ते मुंहिंजो आवाज़ घटि पियो अचे मां इंजीनियर खे चवां थो त मुंहिंजो आवाज़ वधाए इंजीनियर आवाज़ मुंहिंजो वधाए ॾंगणो साहिब ॿुधे पियो ठीकु आहे मां हाणे हाणे आवाज़ वधायां पियो ठीकु आहे छा करे ॿुधायां खिल ख़ुदा जे वास्ते हाज़ुर हाज़ुर हाज़ुर थैंक यू थैंक यू थैंक यू महिरबानी रंगणा साहब ऐं मौजूद स्वामी नज़रात दिल बदली थींदी आहे छा दिल तंग थी करे डॉक्टर साहब बदली करे ॾे कहिड़ी मोटरसाइकिल जी इंजन हुजे बदली थींदी कोन थींदी दिल बदली अदा भाउ जनाब ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां
1: लोटो जी नगरी मां रामचंद कुमार मकवाणो मुखातब दिलबर
0: जी रामचंद छा हाल आहे ख़ुशि आहियो अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे रामचंद आरजी थी वियो आहीं जा सॼे जहान जा नाला वरिता अथई सॼे ॻोठ जा सॼे शहर जा सॼे सिंध जा तुंहिंजा दोस्त आहिनि त मुंहिंजा दुश्मन कोन्हे पाणे थी तंग न कर न त वरी दिल बदली करे ॾियारो गानो तोखे डेडिकेट करे छॾींदसि चलो चलो तुंहिंजो रेडियो सुठो आहे छा कजे तोसां मुक़ाबलो नथा करे सघूं बाबा हलो अस्सलाम वालेकुम हलो हलो अस्सलाम वालेकुम अच्छा जी आवाज़ कोन आयो शायदि कॉल ते ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब कॉल्स इशू पियो अचे ॾिसूं था कंहिंजो आवाज़ आहे साईं मुंहिंजा आवाज़ हूंदो वालेकुम अस्सलाम केरु साहिब ऐं किथां खां खीर थर जबल खां छा हाल आहे साईं नालो पंहिंजो ॿुधायो जमशेद चांडियो साहब के चवंदासीं भलीकार खुश हुजो आबाद हुजो तारनि में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो वेलकम था चऊं साईं अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे महिरबानी सॼी संगत खे सलाम गुरब साईं जुग जुग जीओ, खुश हुजो, आबाद हुजो, खिलंदा रहो, मुस्कुराईंदा रहो। हाय हाय, गानो अची चुको आहे जबरदस्त। हिकड़े पासे गानो हलियो पे दिल बदली करे डे डॉक्टर, वरी बे पासे गानो अची वयो आहे ते इतबार करी तो सवाए सर ही नथी। हाय हाय, जबरदस्त ट्रैक। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी लकेर साहब, ऐं किथां खां?
2: कुंडली खां चोवन कुमार गोलियत पियो करियां सर।
0: छा हाल आहे चोवन साईं, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? अलाह साईं रहम फरमाईंदो, अलाह साईं रहम फरमाईंदो, दुआगू आहियूं इनशाला। तव्हांजे लाइ बरसातूं ईंदियूं, बहारूं ईंदियूं, बरकतूं ईंदियूं। अव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? सही आहे, सही आहे। थैंक यू मिठा माण्हू, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, आबाद हुजो। थैंक यू। ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, केरु साहब ऐं किथां खां?
3: यूनस बाज़ार मोहम्मद पटेल सबान में ॻाल्हायां, नारो साले पट खां सर। कुझु टाइम तव्हां गैर हाज़िर रहियो, प्रोग्राम असां न ॿुधी
0: साईं। प्रोग्राम सूमर ऐं अंगारो थी वियो आहे, यूनस जो वारो सूमर ऐं अंगारो।
3: माशाला माशाला, मोस्ट वेलकम साईं, मोस्ट वेलकम,
0: वेलकम वेलकम तव्हांखे भलीकार। तव्हां साले पट खां ॿुधो पिया, ऐं साले पट जेको सखर ज़िले में आहे, उन जो तालुको साले पट, उतां खां तव्हां ज्वाइन कयो आहे। अव्हांखे अखियुनि साण सलाम कयूं था।
3: महिरबानी, वालेकुम सलाम। असां तव्हांखे बि सलाम थियो था, यकीन कयो जो तव्हांजो आवाज़ जॾहिं ॿुधायो त साईं मरहूम नज़ीर साहिब जो यादूं ताज़ो थी
0: वियो। सदको अलाह साईं हुनखे जन्नत नसीब करे, असांजो मिठो महबूब दोस्त हुयो, ऐं हुनखे तव्हां यादि कयो आहे। अलाह पाक खां दुआ घुरायूं त रब पाक जे रहमतुनि में हुजे। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? इनशाला इनशाला, बस रब पाक जे रहमतुनि में हुजे, हुनजे लाइ दुआऊं आहिनि। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
3: फस्ट टाइम घटि वठूं छो जो ॿिया दोस्त बि शामिल थियण चाहिनि था, ऐं कुझु हिकु ॿ दोस्तनि खे यादि कंदासीं।
0: महिरबानी, ईअं सभु दोस्त जेकॾहिं असां सां तावन कनि त वाजो कम थी वञे। साईं ख़ुशि हुजो, ख़ुशि हुजो। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो साईं? अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, केर साहब पियो ॻाल्हाए असां सां? छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो साईं? अॼु साले पट जूं कालूं लॻनि पयूं, वाह वाह। साईं जी बिल्कुलु, जी एफ एम सॼी ख़ुशि आहे, जी एफ एम जा सभु माण्हू ख़ुशि आहिनि, सभु जेके असां जी एफ एम फैमिली वारा आहियूं उन्हनि जे तमामु टीम बि ख़ुशि आहे, लिसनर्स बि असांजा ख़ुशि आहिनि। हा अच्छा, बसि असांजो फ़क़ीराणो अंदाज़ आहे, अलाह करे त क़बूल पवे। कोशिश कंदासीं, कोशिश कंदासीं। हाज़िर साईं, हाज़िर हाज़िर।
4: ॿोलंदा, ओ ॾे हो अॼु ॾाॾाणो, ओ मुल्क

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: GA FM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

0: वालेकुम असलाम, थैंक यू मिठा माण्हू, थैंक यू लख थोरा ॾिसंदा जी। हाणे कॉल ते केरु? हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, केरु पिया ॻाल्हाइनि? जी
1: बाबर चांडियो।
0: जी बाबर चांडिया साहब, भलीकार चवंदासीं तव्हां सां गॾु, ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी महिरबानी महिरबानी बाबर, थैंक यू। लख थोरा असांजो खीरथर जबल खां बाबर चांडियो साहब जी काल हुई। काल ते हाणे केरु हूंदो ॾिसंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम
0: जी, केरु साहब ऐं किथां खां?
2: जी मिठा माण्हू, ॻोठ हाजी सुल्तान लुंड खां प्यार अली लुंड।
0: छा हाल आहे लुंड साहब, ख़ुशि आहियो?
2: अलहमदुल्ला, ख़ैरियत सां आहियो। सर, मां ॿुधायो, ख़ुशि आहियो त बि सही आहे?
0: अलहमदुल्ला, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
2: सलाम ॾियण चाहींदासीं दिलीप कुमार मेघवाड़, रामचंद कुमार मकवाणो, रस्तम अली कंवर खे।
0: किरोड़े कुर्ब तव्हांजा मोहबतूं मिठा माण्हू, मोहबतूं ॾिसंदासीं कॉल ते। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: जी, केरु साहब ऐं किथां खां?
3: साईं रांझन कोरी, कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां।
0: कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां रांझन कोरीअ खे भलीकार था चऊं।
3: जी जी साईं, तव्हांजी तबियत कीअं?
0: तबियत बिल्कुलु ठीकु आहे, तव्हांजे दुआउनि सां बिल्कुलु ठीकु आहे, शुक्र अलहमदुल्ला।
3: माशाला माशाला,
0: अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे मिठो माण्हू?
3: असां सां गॾु असांजो दोस्त ॿुधे पियो न्याज जुणे जो, ॿियो डॉक्टर फरान, डॉक्टर लालचंद, ऐं ॿिया पंज, ॿियो अली जुणे जो, नज़र जुणे जो, अजी उबाय जुणे जो, गुला नबी जुणे जो, इलियास जुणे जो, माजिद जुणे जो,
0: मोहबतूं मोहबतूं जुणे जो, ख़ुशि हुजो साईं।
3: साईं न्याज जुणे जे सां थो ॻाल्हाइजो।
0: जी जी जी, वालेकुम असलाम मिठा माण्हू, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
4: हा,
0: बसि अव्हांजे अव्हांजे दुआउनि सां वरी ठीक थी वियासीं। बसि अव्हां जूं मोहबतूं आहिनि, ऐं थोराइतो आहियां तव्हांजो, तव्हां असांजे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे ॿुधो था। मां सदको वञा, जेकॾहिं तव्हां ईअं पिया समुझो त अलाह साईं मूंखे ओसी ताईं ज़िंदा रखे, जेसि ताईं मां पंहिंजे धरती जे, पंहिंजे सुहारी सिंध जे माण्हुनि जे लाइ ज़रियो बणिजां, खिल ऐं ख़ुशी। किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू, किरोड़े कुर्ब। ओके जनाब, ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते केरु? हलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कहिड़ा हाल आहिनि? जी ख़ैर आहे, केरु साहब ऐं किथां खां?
5: बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में, तुंहिंजे पासे खां ई मोहम्मद सलीम अमदाणी, लग साबत दस्ती, ॻोठ गाज़ी खान अमदाणी।
0: अच्छा, ख़ुशि आहियो अमदाणी साहब, ख़ुशि आहियो, चङा भाल।
5: सभु ख़ैर, दुआऊं आहिनि, अमन, तव्हां ॿुधायो?
0: अलहमदुल्ला, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
5: मूं सां गॾु मुंहिंजो कज़न आहे मुनवर अली अमदाणी।
0: जी जी,
5: अली गुलाम अमदाणी।
0: जी जी,
5: मोहम्मद सिद्दीक अमदाणी ऐं उमर फारूक अमदाणी।
0: अखियुनि ते मिठा माण्हू, लख थोरा तव्हांजा।
5: अच्छा, इहो हिकिड़ो अर्ज़।
0: जी जी,
5: इहो मेहराबपुर स्टेशन मैनेजर साईं अमन शाह लखियारी खे मुंहिंजा सलाम चइजो।
0: वालेकुम असलाम साईं जिन, बिल्कुलु ॿुधंदा हूंदा, छाकाणि हिन महिल ड्यूटी जो टाइम आहे त बिल्कुलु साईं जिन स्टूडियो में मौजूदु हूंदा, जेकॾहिं ॿुधनि पिया त तव्हांजा वालेकुम असलाम ज़रूरु चवंदा। थैंक यू मिठा माण्हू, थैंक यू। जी जनाब, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु? हलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम मिठा माण्हू, ख़ुशि आहियो प्यारा माण्हू?
0: अलहमदुल्ला, केरु साहब ऐं किथां खां?
6: सर, चूअर जमाली, जावल, दरगाह शाह यकी, नाज़ नगर खान जमाली।
0: अखियुनि ते नाज़ नगर खान जमाली साहब, भलीकार चवंदासीं, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
6: साईं, मुंहिंजो दोस्त आहे दिलीप कुमार मेघवाल, बाबू वेलसर खां रोस्तम अली पवर, सिकंदर अली शबानी ऐं मोहम्मद सदीक पारो, चूअर जमाली खां मोहम्मद हाशिम जमाली, मोहम्मद मेहराब जमाली, गुलाम कादर जमाली, मेहताब अहमद जमाली, नज़ीर अहमद जमाली, बशीर अहमद जमाली, नूर अहमद जमाली, मोहम्मद रमज़ान जमाली, अब्दुल रफ़ीक खान जमाली, सनाला खान जमाली, अब्दुल रफ़ीक खान जमाली, मोहम्मद जुमल जमाली।
0: अबा नाज़ नगर खान, थोरो ब्रेक ते पेर ॾे, साह त खण
6: बाबा, साह खणो, असांजी तुंहिंजी मोबाइल ॾिसाए छॾ, माण्हू आहे यार।
0: अच्छा ठीक है, मोहब्बत में साह तो कौन विजाइबो न, मोहब्बत में साह बचाइबो वे साहब कौन विजाइबो वे साहब जे ओके जनाब दिसा कॉल ते के रे पर गानू केडो है बुधो तुझे हथ जो रुमाल किते रहजी वयो कॉल ते के रे हेलो अस्सलाम वालेकुम जी छाल अदनान चांडियो साहब वेलकम था चूं ता के ता सके बे केर पे बुदे
4: मोसा जो के रजलकार चांडियो जमशेर चांडियो बाबा रमन भानजो असनेनो
0: जी जी
4: अल्लाह दा चांडियो चांडियो
0: मेहरबानी मीठा मानो लख थो रा ता जा ओके जनाब काल देर सा जी के हेलो अस्सलाम वालेकुम
7: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केर साहब सा के बुदे बे
7: मेरा अली कलोड़ो जिला नौ शरफ काल को कांजारो
0: छा हाल है कलोड़ा साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला
7: अल्हम्दुलिल्लाह पाक दुआन सा ता बुधायो
0: अल्लाह पाक जा करम है न किरोड़े करम है ता सा के केर पे बुदे
7: मुजो बाबा मामा जामी न कलोड़ो निसार करो जिके बाहर बहन बुदंदो इरफान से दे के सलाम
0: इरफान थे भी साहब समेत सबनी के सलाम पहुंची है मेहरबानी मीठा मानो कुर्बान दिसना सी कॉल ते के रे हेलो वालेकुम सलाम जुल्फकार भाई मुझे ख्याल में तानी कॉल अटेंड करी चुको आया ना
8: सर कॉल कट जी भाई सजर लगी
0: आई भले कट जी वने पर रिपीट कॉल अलाउ कोन होंदिया मुखे मुखे जको आ ना मुखे मार मिलंदी खबर थी बब दफा कॉल खणन थे ठयो ठीक आ अवा सके केर पे बुदे हेलो कॉल वरी ड्रॉप थी वही है आवाज कौन पे कॉल ड्रॉप ना थी कॉल मुसा कनेक्ट है पर आवाज कौन पे थी कॉल ते केर है हेलो अस्सलाम वालेकुम छा थी वियो आहे वरी बी कॉल अटेंड थी भाई हेलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब आवाज कौन पे अच्छी हेलो चलो जी जिस तीन नई कॉल अचे तेस तक थोड़ी देर ला वहां के गानों बुध रहे ओके जी गाने के थोड़ो रिवर्स कंदासी थोड़ो बुधरायूं था तांके त अनवर विस्तरो साहब है वो के खिलाने के चक्कर में है पर खिलण जी गाल न पई थी पर बुधो

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

खुशखबरी खुशखबरी हाने अमा के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कें भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुरानी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकला आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
0: आप सुन रहे थे
3: सिंध असेंबली जुमे वाले ढीह सिंध जे इम्कानी विरहांगे खिलाफ ठहराव मंजूर किया हो। MQM समेत PTI ए जमात इस्लामी जब मेंबर ऐवान मां वॉकआउट करे विया हुआ। मलीर के इलाके लांडी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अंदर फैक्ट्री के इमारत के लगल बाह से अजा जब्त न आयो। बाह भर वाले फैक्ट्री के भी पंजे लपेट में आने छो। बाह सबब इमारत जो एक हिस्सों किरी पो। 16 फायर टेंडर्स नारकल ए वाटर बाउजर्स बाह वसायण की कोशिश में रुधल। सिंध रेंजर्स का जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। दुए में साबु सर्जेंट कर हालत खराब थे बिन औरतों ने एक मर्द के अस्पताल मुंतकिल कर वडे वजीर वाके जो नोटिस वरतो। मुराद अली शाह बाह से जब्तो आन लाय समूरा वसीला कतबांदा वींदा। सभी लागापल अमलदार बाह से जब्तो अचण ताई वाके वरे हथ मौजूद रहा।

0: मिश्री और बादाम, कश्मीरी गोल्ड मेवा, मस्ती भरा मजा।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में तेज जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का।
0: कोकोनट का नट चबाने का कट, स्वीट हिल नट कट कोकोनट।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: ब्रॉट टू यू बाय
0: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान
3: बे कमजोर हालत बावजूद पंजे मुल्क में 35 सूबा ठाए छड़ा है।
4: जो कि फॉर्म 47 जिले की बात कर रहे हैं, वो बैठ के तनकीदें कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, वो 18वीं तमीम पे बात कर रहे हैं। आप लोग पहले अवाम में जाओ, अवाम से इलेक्ट होके आओ, अवाम के वोटों से जीतो, फिर आप खैराती मैंडेट पे आके बैठ के, आप लोग खैराती मैंडेट पे आके बैठ के, आप बैठ के कौम के फैसले नहीं करोगे। जो सर ये खैराती मैंडेट पे बैठे हुए लोग हैं, ये कौम के फैसले नहीं करेंगे, कौम के फैसले इलेक्टेड लोग।
5: शहजील साहब मुझे मोशन पुट करने दे, नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस, दोज हू आर फॉलो।
3: खैराती मैंडेट से आयल वफाकी वजीर अरनीन तरमीम ऐं सूबन ते ॻाल्हाए रहिया आहिनि। खैराती मैंडेट ऐं फार्म 47 ते आयल क़ौम जा फ़ैसला न कंदा। पहिरीं वठनि क़ौम जा फ़ैसला फार्म 47 वारा न पर नुमाइंदा ई कंदा। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन चयो आहे त वफ़ाकी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे, हिन जवाब न थींदो। वफ़ाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु बि मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे, पर घटि बिजली बि मुल्क खे ॾेई रही आहे।
6: अगरि अब मोहसिन नक़वी के मुंह से हमने सिर की तक़सीम की बात सुनी तो मोहसिन नक़वी के इस्तीफे से पहले हम घरों को वापस नहीं जाएंगे।
3: सिंध जे विरहाङे जो मक़सद अवाम खे विराए वसीलनि ते कब्ज़ो करणु आहे। मोहसिन नक़वी ॿीहर सिंध खे विराइण जो बयान ॾिनो त संदसि इस्तीफ़ा खां सवाइ वापसि घर न वेंदासीं। कराचीअ में सिंध हाईकोर्ट बार जे सेमिनार में मुल्की वकीलनि जो वाज़ ऐलान। वकील अॻवान सलाहुद्दीन अहमद चयो त मोहसिन नक़वी जे पुठियां वेठड़नि बाबति इहो दुरुस्त फ़ैसिलो करण जी सलाहियत नाहे। लाहौर जे वकील हसन इक़बाल वड़ियूं हालतूं पैदा कंदड़ मुशरफ़ हाणे

मिस्टर गोहर चयो आहे त अवाम जी मर्ज़ीअ बिना सिंध जो विरांगो थियो त वफ़ाक कमज़ोर थींदो। सूबनि जी क़याम बाबति तकरारी कानून साज़ी न थियणु घुर्जे, हीअ संजीदा मामिलो आहे, बहस थियणु घुर्जे। सलमान अकरम राजा चयो त 73 जी आइन ख़िलाफ़ वञी सूबनि जे विरांगे जी हिमायत न कंदासीं। आइन वाज़े आहे त लाइ लाॻापियल सूबे जी असेंबली ई मंज़ूरी ॾींदी।

सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जे अवाम सां गॾु विरहाइण पहिरियों मुंहिंजो हूंदो। कराची ख़िताब कंदे सिंध जी पेश कयां थो। सिंध इमरान सिंध सां सचा आहिनि त गॾु रोडनि ते अचनि।

मलीर के इलाके लांडी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अंदर फैक्ट्री की इमारत के लगल बाह से अजा तजाबो न आयो बाह भर वाले फैक्ट्री के भी पंजे वकड़ में आने छो बाह सबब इमारत जो एक हिस्सों किरी पो 16 फायर टेंडर स्नार्कल वाटर बाउजर्स बाह विसायण की कोशिश में रुदल सिंध रेंजर्स जा जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल ताह मुसाड़जन करे हालत खराब थियण ते बिन मर्दन एक औरत के अस्पताल वजीर वाके जो नादली शाह जो चवण हो तो बाह ते जाब्तो आणण लाइ समूरा वसीला कतबांदा अमलदार बाह ते जाब्तो अचण ते वाके

0: इंसान नहीं आने चाहिए, सारी दुनिया में चीजें होती हैं जो फर्ज करें किसी सूबे में एक सियासी पार्टी की हुकूमत नहीं रहे। मेरा ख्याल है ये वफाक की भी नफी नहीं करता, वफाक को भी मजबूत बनाएगा।
1: नवनसूबन या इंतजामी यूनिट्स जो क्याम कौमी मसलो है इन मामले के किथा में मजाहमत न थियण घुर्जे। ये फैसलो वफाक समेत सूबन के मजबूत कंदो। बचाव वाले वजीर ख्वाजा आसिफ अकबर भी नवन सूबन की हिमायत कंदे कहें सूबे जो लफ्ज़ पसंद ना है तो इंतजामी यूनिट छो वे। सूबे के मामले से सियासी बयान वधाए पेश कया पा वन। इस्लामाबाद के सूबो ठाया पो वे तो सुठो थन्द। अफगान बे कमजोर हालत बावजूद पैं मुल्क में 35 सूबा ठाए छा।
2: दो वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है। अनफॉर्चुनेटली वो वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं जो गांधी की पैदावार है, वो बैठ के चीजें कर रहे हैं, वो बैठ के बात कर रहे हैं, वो 18वीं तमीम पे बात कर रहे हैं। आप लोग पहले अवाम में जाओ, अवाम से इलेक्ट होके आओ, अवाम के वोटों से जीतो, फिर आके आप लोग खैराती मैंडेट पे आके बैठ के आप बैठ के कौम के फैसले नहीं करोगे। जो सर ये खैराती मैंडेट पे बैठे हुए लोग हैं ये कौम के फैसले नहीं करेंगे, कौम के फैसले इलेक्टेड लोग।
3: मुझे मोशन पुट करने दे। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस दोज हु आर फॉर
1: खैराती मैंडेट से आयल वफाकी वजीर अरनीम तरमीम ऐं सूबन ते ॻाल्हाए रहिया आहिनि। खैराती मैंडेट ऐं फार्म 47 ते आयल कौम जा फैसला न कंदा। पहिरीं हीअ अवाम वटि वञनि, मैंडेट वठनि, पोइ ॻाल्हियूं कनि। कौम जा फैसला फार्म 47 वारा न पर अवाम जा चूंडियल नुमाईंदा ई कंदा। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद चयो आहे त वफाकी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि त कंहिं जवाब बि मिले, बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु न थींदो। वफाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु बि मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरी मुल्क खे ॾेई रही आहे पर हिते लोड शेडिंग सभिनी खां वधीक आहे।

पीटीआई अवाम की मर्जी बिना सूबन के विरहांगे की मुखालफत कर छी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है अवाम की मर्जी बिना सिंध जो विरहांगो थो तो वफाक कमजोर सूबन की क्याम बाबत तकरारी कानून साजी न थियण घुर्ज ये संजीदा मामलो है बहस थियण घुर्ज। सलमान अक्रम राजा चयो तो 73 की आईन खिलाफ वही सूबन के विरहांगे की हिमायत न कंदी। आईन वाजे है सूबे के विरहांगे लाए लागापियल सूबे की असेंबली ई मंजूरी डींदी।

0: केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6। सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए एफएम नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज गीत संगारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आप।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: आवाज ये हैदराबाद सिंध जो आवाज
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
3: The sun is one and shall remain one.
4: Now I put the resolution to the house. Those who are for the resolution may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously.
5: सिंध हिक है सदाई हिक रही सिंध असेंबली सेक्रेटरी।

चुका है, एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस है सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल है, हर छंछर का खमी सताई सुबह है। टिंड हॉक बदीन स्टॉप रोड, टीबी बैंक जे साथ अधिक मालूमात जिला रब्तो करो 7700।